0: ओरिजिनल खोजो सेन्टर फुड नै रोज मुड बनाउँछ टिङ टङ हैव यू ट्राइड ऑल फ्लेवर्स.
1: This video suggests a couple of programs for Windows, Mac.

Elambu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: यसपालि चाहिँ म लामो छुट्टीमा आउँदैछु।
1: पर्खेर बस है त।
2: कस्तो छ तपाईँलाई अहिले?
3: मेरो मोबाइल खोइ।
2: तपाईँको मोबाइल त एक्सिडेन्टमै हराएछ अरे।
3: अनि मेरो ब्याग?
2: 3 हप्तापछि बल्ल तपाईँको होस्पिटल।

0: कोलम्बो एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज।
1: अब रंग फेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेट नला विश्वासी समक बसुगो
2: लोङबदा हरङलासी डासेला जयमसी तथा नमस्कार लासु फेफुला कार्यक्रम स्पार्क माई फेट तथा जीवनला छेन गदेला श्रृङ्खला अङ्क 41 रानी स्वागत मुला नियोग तामाङ साहस विभत्तिगा हिन्बा जब लारन रङमा मिगदे साहसला बारेरी नेमुला थेने गदेसे सुपर हिरो गदेला वर्णन लमुला जो असाधारण गे गदे लानन सहजता क्षम लमुला थे परिकल्पना गदेसे यङदा च्यावला लागरी जब चलचित्र गदे सुमुला तसै थेने गदेसे वास्तविक लुइला वर्णन अलामुला जब यङरी साहस प्रकार लजिबा तमुला चुला अर्थ चु आइनब तिगा याङ देन लोङमा अरे चुला अर्थ चु जखेन हिन्म कि याङ लोङमा तसै नोन याङला लक्ष्य

0: तिग्दबिसम जम्मन्तम एदा प्रभुसे गोनालाला लोङबा याङसिप अनुभव लबरी हम्मा याकरगिनमा तसै परमेश्वर से याङदा लोङबा दा डाबरी हम्बा अझ बाङबा प्रेरणा छोनट लबा शक्ति पिन्सिब मुला रोसे याङदा लोङबाला सामना लबन साहस से गे लब क्षमता पिन्सु मुला मती चौध अधैरी याकरगी कथा मुला जहाँ यशु कि फिरि ब्रवमुबा रो रङला चेलागदे क्रेबा डुङ्गरी निवन मुस्युबा मती चौध अधेल अठाइस जमहेन्से पत्रुसे यशुदा प्रभु रङ्गोन हिंसम नदायनोन समुन्द्र थोरी ब्रवी ब्रसी रङ मुब ग्लारी खाउ बिसी सुङ्गो बिसी बिजी लोङबरी विजय याङबा गीतसा कदम बिबा रङला परिस्थिति लागु तसिला परमेश्वरला प्रतिज्ञा मनमा हिन्न पत्रुस त्यही फेरि ब्रबरी लोङमुला प्रयास लबङ्छा थे यसु ग्याम चु लबरी हामला बिबा आश्वासन सेमला मुबा पहिलो थेस्लो कि दुई अधेला तेह्र नन्से एनी गदिदा थेन लब वचन द मि गदेला वचन अहिन तर परमेश्वर लान वचन हिन्न बिसी विश्वास लजी थेनन परमेश्वरला वचन से एनी गदे नङरी गे लवन मुला थेत बासलमा चुलन लागरी हन्से सदन परमेश्वर दा धन्यवाद पिन्बा मुला जब परमेश्वर से नन्दा हजिबै तमला प्रतिज्ञा लस्यु मुला थेने याङ विश्वास लक्षम थे प्रतिज्ञारी परिणाम याङमा ग्यारेन्टी तामुला मती चौध अध्यायला उन्तिस यसु से लु खाउ बिसी सुमहेन्से पत्रुस दोङ्याम फप्सी यसु मुब ग्लारी निबरी समुन्द्र थोरी ब्रबरी छोइजी यसु से पत्रुस त सुङ्जी कि यदि थेसी विश्वास छ्याम गे लामुला विषम थे कि फेरि ब्रबरी हम्बा ताला रङला लोङबा दा डाब्रा लाग्री परमेश्वर से याङ से पिन्सुब प्रतिज्ञारी रङसी कदम चलब लादोला मती चौध अध्याय तिस तर ग्रेन लाबा खाबा म्याङसी थे लोङजी लोङबसे लामा थे समुन्द्री डुब ताबरी छोइजी जमेहेन्से थेसे यसु नद जगबलाउ बिसी क्रिङजी सम्भवत पर्तुस्त स्योङ प्लाङबरी हावन आरे मुबा थेसे रङसे चुराङम ग्लारे थान्म मुबा जहाँ थे कमजोर मुबा यसुजे पर्तुस्त सोना लस्युजी मती चौध अधेर एकतिस यसुजे तुरन्त पर्तुस्त या सुङ्जी खाई एला विश्वास यसे तिगा शङ्का लभा बिसी सुङ्जी यसु ख्रिस्ट देन रोसे प्रतिनिधित्व लस्युबा परमेश्वरला शक्ति याङ असफलतामा याङदा सोना लबरे हाइमा दमान थेरी तला गेन लुइरे सफल निगदे असफल निगदे ग्याम अलग ताबत्ताम विवाह याङसे असफलता रि हरङसी प्रतिक्रिया पिन्ला विवाह हिन्न सफलता ग्याम अवरोध गरी गलत मोड गरे देन खाडल गरे से प्रिङ तला सफल तबला लागरी याङसे लिच्छला रेखारी नपुगन्जेल दोना नच्छ बडप तोला तिबा गरे लानन मुला तसै थेनी गरे जिन्ना आलामुला सफलता याङबला गोप्य कुञ्जी हाइमै ब्रेबा आयाङबा हिन्न तनावला दुईरी कमजोरला दुईरी पीडाला दुईरी निराशाला नच्छा थालाक्सुगो साहस नसुगो हरङ हाइमै हाइमैमा चु दिनला अन्त्यरे याकरकी शान्त आवाज हिन्बा जोसे दिमुला ना नङ्ग दोषी प्रयास राला देन यदि न नङ्गल असफलता विषम न अर्को दिन प्रयास डाला आमेन रङ्गिला जीवनले परमेश्वर जी प्रशस्त आशिष पिन्छु गए
1: प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी न्यन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रङ्गिला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98685353 हस् त त्यो समय रिङ बिदा ताजी रङ्गनी छङमदानु जयमसी नमस्कार।
2: टाइम चेक इट्स 7 PM
3: अहिले साँझको 7 बजेको छ।